गुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव।

सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आठ संगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है झाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो पर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त जुजू करियो हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो परी चतुर्दश कंता।

को सिमट पयो संकर एकैठा। सिगरी सिष्ट दिखाई अचंपव, आद जगाद स्वरूप स्योंपव। अब्रच्छा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। जोस जिते उठवत उत्पाता, सकद मलेच्छ करो रणकाता। जे अस्तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल

सर्वठोर मोह हो सहाई दोस्त दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता दोस्त दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। अनवांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला। उसने

संबत 17 सैस पढ़ेज अर्ध सैस वंतीन कहेज पादरुषदी अष्टमी रववारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रोपख्याने त्रेया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत मस्त सब मस्त अपजू दोहरा।

अपना जान करो रखवार, बाहें गहें की लाज बिचार। अपना जान मुझे प्रतिपरिय।

प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कपता बदनाना कृष्ण जथा मत्र तरो उचारो चूक होय कबले हो सुधारो कबियो बाच दोहरा।

सुबह मेरा तो भैया वो प्रसाद सहन वो सब पिया वो बैठ कर दयान जर गुण है गुण कृष्ण भुग जाए बख्श रे हो तो नान सी जाए जय प्रसाद अरुब सुख बस है सोत प्रादमी तब बनता सन हस है जय प्रसाद पी वह शीतल जल है सुखदाई पवन पाप कमला जय प्रसाद को कह सब रसा सगर समग्र संसात बसा दीन हस पाव करना नेत्र रसना तिसहित आकर संरचना ऐसे दुख मूढ़ व्यापी नन का लिखु प्रव्यापी आद्यंत जो रखन हार ते सिंह प्रीत न कर गुआर

कर्म। तू ठाकुर तुम हरदास, जीव पिन सब तेरी दास, तुम बार पिता हम बार पुतिर, तुमरी कृपा महसूह के निर को न जाना तुम राम, तू जित बुझा भगवंत, सगल समागरी तुम राय, सूतर धारी तुम देव स्वागकारी, तुमरी गात में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सलोक दीन हर प्रभु छूट के लागे हन सवाई, नानक हु ना सी जाई, बिन नावें पद जाय पति दास, बस तुले पाछा पावई, बस कान में कोट गुआवई, बिना दिए दास पी फिर लिए, तब मुड़ा कहो कह करिए, जैस ठाकुर से ना चारा, तक की जसद नमस्कार, जग मलग प्रमीठा, सर्व सुख तक मन बूठा, जिस जन अपना कुमन आया, सर्व थोक नानक दिन पाया, अगन दसाहु अपनी दिरास, खाद पीत बर ध्यान दिवलास, अपने मान का बहुर साहु दी, अज्ञान मन रूस करी, अपनी प्रतीता भी हुआ, बहुर उसका विश्वास न हुआ, जिसकी वस्ता तिहागा राख है, प्रभु आगा माना मात है, उसे चौगन करे निहार, नानु साहिब सदा दया रंग पद माया की हीत, सर्वर वत जानंग यत बिरखी छाया, सिंह रंग लावे, ओह बिन समर पछतावे,

लाय मिथ्या तान तान कुटाम सबाया मिथ्या हम है ममता माया मिथ्या राज जो बन तन बार मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रात हस्ती असव वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीठ हस्ता मिथ्या त्रोह मुह मान मिथ्या सुपुर कर्त कुमार

ज्ञान जापा सकल संसार ब्रह्म ज्ञान इकाई का रंग ब्रह्म ज्ञान का वासा प्रभंग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सदा जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्याग ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहज।

प्रभावत पततियो धर अपकर अपन विचार दुहा श्रे का स्वामी के रब शांत जम जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहु मान उगति क्या हुई आवे जो पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब की शैली जो दे पावे सोई करी अन जानत विखिया महाराज जी जानत अपना बचा परम पुला दह दह तावे ने मुख माही चार कुंड फरावे

अपन विस्तार सब काश उस कहु करने आरोह की पेन कहु हो कि सोए था अनंतरी का सोए अपने चरताव करने आर कहु तो करे रंग अपार मन महा मन अपने बाहिंदा न कर कीमत कहना जाए साथ साथ सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद के नव ज्ञानी सच सच सच सब की न कुट मध्य के न बिरला जी न पला पला पला तिर रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तिर बाणी कट कट सुन श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मंत्री श्लोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपदी संत का दुख नार जगत संत का दुख जम तरह छोटा संत का दुख न सुख सब जय संत का दुख न नरक में पाए संत का दुख न मैं तो ही बलीन संत का दुख स्वादहीन संत के हते कौ रखे न कोई संत का दुख संत प्रस्ट हो संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग नंदक पीतार संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जो रवे संतन के दुख न सर्व जोन पाए संत के दुख न त्रिगत जन कर पाए संतन के दुखन त्रिस नाम है जरा संत के दुख सब कुछ आलाय संत के दुख ते सब जाय संत के दुख नीच नीच आई संत दुखी का था गुना नान संत पावे ता हुई विगत पाए संत गनंद क महात ताय संत गनंद क किन टिकना पाए संत गनंद क महात यार संत गनंद क परमेश्वर वारा संत का नंदक राज दुहीन संत का नंदक दुहियार दीन संत के नंदक को सर्व रूप संत के नंदक सदा विजोग संत के नंदा दुख में दुख नान संत पावे ता उसका पी हुए मुख संत का दुख सदा पुवियत संत का दुख के साकार निमित संत के दुख को डान लागे संत के दुख का सब त्याग संत का दुख महाअहंकारी संत का दुख सदा उपकारी संत का दुख जन मरा संत के दुख न सब तिटारा संत के दुख को ना ठाऊ नानक संत भक्त नहीं मिलाई संत का दुखी अत बीते टूटा संत का दुखी था काज ना पाए जय संत का दुखी अवध ज्ञान परमाई जय संत का दुखी जट पाई जय संत का दुखी अंतर दे थो था जो सास बिना मर्त गिरो था संत का दुखी की जड़ की सुना है अपन भी जाप ही था ही संत का दुखी का वरना राखना नान संत पावन रहे वो बहार संत का दुखी यू बेल लाए जो जल भी हूं मछली तड़फड़ाई संत का दुख भूखा नहीं राज पाव कीर्त नहीं त्राप संत का दुख छुटया केला जो बुआड तेल कीर्त महन दुखीला संत का दुखी तन तेरा हत संत का दुखी साध में से कह कीर्त नंद का दुखी पाया नानक जो दुख पावे सुख थिया संत का दुखी विकट रूप हो जाए संत का दुखी का दर्ग हमला सजाए संत का दुख सदा सहकारिया संत का दुखी न मारा न जीवाइया संत के दुख की पूजा न आसा संत का दुख चले न रासा संत का दुख न दृष्टा कोई जह पावे तैसा कोई हुए पाया कर न बेटा कोई नानक जाना सच्चा से सब काट दस क्यों करने आर सदा सदा दस नमस्कार प्रभु की उस तत्व करो दिन रात दिस हितिया सास ग्रह सब कह वर तत्व किया जैसा करे तह कुथिया अपना किला करने आर दूसर कौन कहे विचार जिसन कृपा कर तथा अपना दी बड़ पागी नान जान सी श्लोक तज हो सियान सुर जन हो सिमरह हर हर आई एक बार सहर मन रख नानक दुख परम पाव जाय अष्टपदी मानुख किटी कबृथ सब जान दीवन कव एक भगवान दीवन कव एक भगवान जिसका दिया रह आ गई वह न तुरस न ला गया मारा रखे कुआ मानुख कह कृष्णांगात तस्का कुंभूज सुफेद कनावरा कंड क्रोय सिमर सिमर सिमर प्रभु सोय नानक वेग न लागा कुल उस्ताद मान महकार निरंकार कर मन विद सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहिला कर दीह जियो नैन बीख ठाकुर करंग सा संग बिन सा सब संग चरण चल मार गोविंद मिट पाप जप अरविंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्ग नानक गुजन मथा बिड़ भागी ती जान जग माहि सदा सदा हर गुण गाय हे राम नाम जो करह विचार से तन वंद करे संसार मान तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान ती सुखी एक हुई एक पुछा ने तो तुझ सोजी जान नाम संग जिस मन मानिया नानक दिन निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपना सो जाए तुझ जानो दर्शना बो जाए सा संग हर हर जा कहत सर्व रोग देव हर जन रहत अनदिन कीर्तन की ओर बकिया अनग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जशन की आशा तुझकी कट गया जम की फारसा उपार बन बुझे हमार भूख नानक ते सहना लाग दुख जिसको हार प्रा मन जित आवे सो संत सोहिर नहीं बदलाव जिस प्रभ अपना कृपा करा सो सेवक कहो कह ते डर जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तथा बुझिया जब दी खाओ तब सब कि नानक सो सूखम सोया स्थूल न किस जन मै न किस मर अपन चलता अभि कर आवन जावन दृष्ट दृष्ट आग कर तर सब सृष्टा प्याव सगल में हवा मनक जुगत राज था प्यो था प्याव नास नाह किस खंड तारण तार ब्रह्मांड
ਅਲਾਕੇ ਪੀਏ ਵਾ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾ ਵਾਪਸ ਪਾਇ ਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾ ਬੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰਾ ਤਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਪਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਪੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਾ ਪਾਇਨ ਹਾਲੁ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸੁ ਜਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਮ ਪਟ ਭਾਗ ਨਾਮ ਜਬਦ ਪਾਵੇ ਬਸਰਾਵ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਪੁਰ ਕਾ ਉਦਮ ਕਰ ਮਾਰਨ ਜੋ ਕਿਸ ਕਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ਕਰਨੇ ਹਰ ਪਛਾਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨਮ ਈਰਥ ਲਗਾ ਨਾ ਜੈਸਾ ਸਹ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਾ ਰਿਹਤੇ ਉਪਜੇ ਤੇ ਹਮਾਇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸੁਖ ਨ ਦਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਨ ਆਇਆ ਉਸ ਪਾਵ ਦੀ ਨੋ ਮਾਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਾਰ ਪੂਰ ਪ੍ਰਭਿਰਥ ਜਾਨਨ ਹਰ ਜਾਗ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਇਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲ ਸਗਰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਫਨ ਮਾਹਿ ਰਿਹਤੇ ਬਿਰਥ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ਰੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ।

सहज कर जातन अनुसोजन सहज समाता सरूप रूप नारीक नारंकिश त्रिहु गुण ते प्रापेन तिसे बजाय नानक जसु वस प्रसन्न अष्टपद अविनाश ब्रह्मान महाराख मान उत प्रीत त्याग तिह ते उपर ना किस को सर्व निरंतर को सोया बिना बिदान गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा धन दयाल भक्सान दसा तिर चन पाव नानक मन अनुराग

श्रेष्ठ सो करने आरव न बुझ कर विचार करते कि मेत ना जान किया नान जो दिखा सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्म भय जन बुझिया दहया स्वाद प्राप्त कर अंग राज जन रही गुरु का वचन पदार्थ रही हुए दाति दुखाट नार जाग संग तरा संसार जैन का सेवक सब पागी जन का संगी कर लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नान फर पावे श्लोक आद सच जुग आद सच है पिय सच नानक वसी पिय सच अष्टपदी चरण साधु सत प्रसन्नार पूजा साधु सत शिवदार दर्शन साधु सत विखनार नाम साधु सत यवन हार साधु सत अवतारी अभिगुण अभिगुणकारी शब्द साधु सत प्रवक्ता सुरत साधु सत जस संता भुजनार को सत सब भुजनान साधु सत प्रभ सुध सत रूप परेदा।

जात मार नाखा वरना कुए सर्वजी आका राखा सुय कह सोच कर हिरे प्राण जपना अनुप्रव रख वाणी वैर वैर वैर प्रभ जपिय पिय अमृत महातंत्र पिय नाम रतन जन गुरु पाय देश की शैवर नाह दृष्टाय नाम दान नाम रूप रंग नाम सुख नाम कसंग नाम राह जो जान तृप्तानी।

जाय प्रभु स्वर सुमाय जो हुआ हुवत शुभ जान प्रभु निकम पुछान तिहकी महिमा कौन बखान तिहका गुण कही कन जानो आठ पहरु प्रभु से हजूरे कहु नान से जन पूरे मन वीरे दिन की ओट देहि मन तन अपना दिन जान देहि जिन जान अपना प्रभु छा सो जान सर थोका दाता तिसकी शरण सर सुख पाव तिसका दरस सपा मिटाव अवर सियान सविशाट तिह जन की तुसी वाला गाव जान हुई तेरा नानक तिह जन की पूजा साध पैरा सलोक साध पुरख जन जानिया साधु गुरु का नाव तिसका संग से खुदरा नानक गुण का वश परि साधगुर सिख की करा प्रत पार सेवक गुरु सदा दयाल सिख की गौर दुर मत मार हर गुरु वचन है नाम करा साधु सिख बंधन काट गुरु का सिख उकार दिया आट साधु सिख नाम तान दी गुरु का सिख बड़ भागी ही साधगुर सिख हरत बल सवार नानक साधगुर सिख पाव जी अनाज समार गुरु कै गृह सेवक जो रह गुरु की आगमन महसाह आवस तो कार काश ना जनावे हर हन अवृद हत्यावे मान भी चय सतगुर का पास ते सेवक की कार्य ग्रह सेवा कर तुई निष्कामी तिसका हो तो प्राव स्वामी अपनी कृपा साहब करी नानक सो सेवक गुरु की मैत ली भी विश्व गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गात जान सो सतगुर जिस हृदय हर नावन कुबैर गुरु का बल जाऊ सर्वन धन जी का दाता पहरु पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म ई कह आप नहीं कह परम सह सो सियान पलया न जाइय नानक गुरबुट पागी पाई सफल दर्शन पीहत पुनीत परसत चरण गायत निर्मल रीत पीठ संग राम गुण रवि पार ब्रह्म की दर कह कवि शंकर वचन कर्ण आय गहन संतु घातम पतिया ने पूरा गुरा किया जाग मंत्र अमृत दृष्ट पीखा विसंत गुण बेअंत क्यों दृह पाई नानक जह पावत हरे मलाय जिह पाई कुस्त अनेक सात पुरख पूर्ण पबी कह बोल न पहचत प्राणी अगम गोच परम निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायिता की क्यों के नाना पायन भगत बंधन नियत कर चरण कमन हृदय सिमर सदबल हरि सदगुर अपने नानक जह प्रसाद सप्रभु जपने एक हर रास पावे जन को अमृत पीवा अमृत सोहे उस पुरख का नाह कद विनाश जाक मन प्रगट गुणता साठ पहर हर का नाम लिये सहज उपदेश सेवक देव मोह माया का संग नाले मन में राख हर हरि को अंधकार दीप प्रकाश से नानक परम मोह दुख तह तीन दास तब तम ठाण वरत अन पै दुख नाठ पाए जन मन के मिट जाती इस साधु को पूर्ण उपदेश पा चुका निरपा हुए बसे सगल व्यात मंत्र खै नसे जिसका साथ कृपा तर शासन जब नाम रिधित पाई चुके प्रम गमन सन्न हर हर जा श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही करा तार जिन सगले मोहे अपने चरत प्रभा बनाए अपनी कुमत आप पाए हार बिन दुजा नाही हुए सर्व निरंतरी को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रकाश साध का संग राच रचना अपनी निकलता हरि अंक नंग बुल हरि श्लोक साथ ना चाला बिन भजन विखे सगली शार हर हर नाम कमाय मना नानक होता अनुसार राष्ट्रपति संत जना मेल कर विचारी सुन नाम आध हर और पाव समीत विसार चंद कमल रिद में अवतार रहो करण कारण सुप्रभ सम्राथ त्रिट कर गह नाम हर बात हो तन संग चह हुआ भगवंत संत जनक निर्वनवंती का सराख मन बाहि सर्व रोग नान मिट जाहि।

सो बाबा जहर की सरणी मन कियो पाए भी रोग न जाए रोग मिट हर अब कतराय सरुन दान में हर नान दान जप नान तर प्रवान मन कर बोध हव हर का नाय देह देह ताव ताव ठाई तक विघन न डग कोई जा कर दस हर सोय काल ता तुक ठंड हर नाम सिमर सिमर सदा सब पाव पाव बिन सब पूर्ण होया सब पद पाया तुम प्रगास तेत कर जाय बसा बनासी कह नान काट जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म वर सुख चुका चय आवागमन मिटा प्रवसी आप त्याग शरण कर देव यो रतन जन्म कह उदार हर हर सुन प्राण आधार अन की उपाय न छूट नार सिमरत सा सत वेद विचार हर की भगत कर मन लाय मन वंशत नान फल पाए संग न चार हीरा तना तुम क्या लुटावे हम गुरुख मना सो तुम ईत कुटाम बार बनता इंती कहो तुम कम सनाथ राज रंगमय विस्तार इंती कहो कम छुटकारा सहस्ती रात अस्वर जूठा डम झूठ पा सारी जिन दिए तह बुझा न बिगा ना ना बिसा नान पिछता न गुरु कुमार तुम या ने भगत बिना पाटू बे सियाने हर की भगत करो मन बीत निर्मल तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन वाह जन्म जन्म के किल विख जाहि आप जब हवरा नाम जपाय वह सुनत कहत रहत का तु पाय वह सार पूत सात अर को नाम सह सुबाय नान गुन गाव गुन गावत त्रि उत्तर समैड गुन सजा होम बिकैल उही अचिंत बस सुख नाल सास ग्रास हनाम संभाल षट सियान सगले मन सा संग पावे सच तन हर पूंजी संच कर व्याव हरि हस उतर गज जयकार सर बंदर अंतरी को दीख कौ नानक जा कर मस्त लिख एक पूजा पी कुशला ही एक सिमरे को मना ही एक उसके गुण गाव अनंत मान तन जा भी एक भगवंती को एक एक हरिया पूरन पूरे हो प्रव्याप अनक विस्तार एक दे पै करात प्राशत गए मंत्र अंतरी प्रव्रता गुरु प्रसाद नानक के जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर तो शरण आय नानक प्रवीति अपनी भक्ति लायापदी जाचक जन जाचा प्रावधान कर कृपा दीव हर नाम सा जनक मां का तूर पार ब्रह्म सरदा पूर सदा सदा प्रभु गुण गाय सा प्रभु तुम त्याव चरण कम सिंह लाग प्रीत भगत।

जिस तह चाल सिद लगत भव कीस जह जोस रूप जो संग समावे तह किसै पूख कौन द्रव तव कन कराउ न करन यार नान कर जे का न सुमार जब अपन सुबह अपन संग बनाय तब कौन वाय बा मित्र सुत पाई नेह सर्व कराया पह प्रवीण तह वेद कतिब कह कोचीन जब अपन आप आप उर तार तव सकन अब सकन कह विचार।

हरिव तोरह जुग कहना सो आप ही कह। आज्ञा अवाज्ञा जाई नन जऊ पावे तल सुमाई हुई सो नाही बुरा उरा कहु के न कछ कर। आपला करतूत अतनी किया में जाने अपनी जी की अवसाच तार सब साच उत्पूत अपन संग्राच ताकि गात मित कहीं ना जाए दूसरो इतना सूझी पाई।

असंख जाप असंख पाउ असंख पूजा असंख तव ताउ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदासन असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह भक्सार असंख मुह लवलाय तार कुदरत कवन कहं विचार वारया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घूर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो दुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन एह लिखे ते सिरन आए जे फुरमाए तिव तिव पाए जेता कीता तेता नाव बिन नावै नाहीं को थाव कुदरत कवन कहां विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉੱਤਰ ਸੁਖੇਹ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜਾ।

गोविंदम आख ईश्वर आख सिद्ध आख केत कीते बुद्ध आख दान आख देव आख सुर नर मुन जन सेवम किते आख अखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख न सकह की के।

वह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद्र दासन बैठे देवत्यां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे।

गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई।

जुग जुग एक वेशम आसन लोए लोए भंडार जोग छपाया सोए का वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सयादेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेशम एक दूजी पौ लख होहे लख होवहै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए त्राहे पद पवड़िया चढ़िया हुए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की टाई रीस नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीसम।

प्रकाश है, अतंध है, बंध है, भक्त है, प्रक्त है, नाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, लिख है, दिख है, लेख है, पीख है, टा है, गह है, सम्भ है, गम है, नील है, नाद है, नित है, सो नित है, अजात है, जाद है, चर प्रशांत है, प्रसाद सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं प्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं कर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, सावल शांत्या प्रसाद नमो नरक नाशे सदावं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमात्थे सदा सर्वसाथे अगास रूपे निर्वाद विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्रा न सत्रा न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता न साकं शरी क्या मित्रमीक है सदैवं प्रवाह अजय है अजा है भगवती शांत्या प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहब दिमाग है कि उसनल चराग है कि कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहिंद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है कि उसनल जमाल है गनीमुल खराज है गरीमुल निवाज है हरिफल सकन है हरासुल फकन है कलंकं प्रनाश है समस्तल निवास है अगंजल गनी में हर जाय कर ही मैं समस्तल जबा है कि साहब करा है कि नरकं प्रनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तल अजीज है परं परमीश है समस्तल अधीश है देशल अलेखा मेसल पेखा जमीनुल जमा है मीकुल अमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है के अचुंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह के आत्म प्रवाह के चलन अनांग है के मित्तो भंग है मधुपार संत प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मदाम अर बार गंज हर नर प्रबंध जन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड बर नर मान डैन भव अनाश मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम छिंज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित्तो दार जल थल अमांड दिस विस अभन जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिरतरास आजान बाहो इकै सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद हल खंड ख्याल गुरबल अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम छिज गात अजिजना बातन झंझ गातन नंज बातन पुट भंडारन ठट पार आदीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन वर्ण नंत दाता महंत हर गोलमला संत प्रसाद करनालय है अरकालय है खल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है तृत के तरण है जाके कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाश्य है सर्वनाश है करनाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पारते पर है करनाकर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत है मृता मृत है मृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धर्मी कृत है मतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है मृता मृत है अजबा कृत है मृता मृत है नर नायक है खल खायक है विश्वंबर है करुणालय है नृप नायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरगंजन है रिप तापन है जप जापन है कलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बास है जास के जास है पुंजंग प्रजा छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं काम संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलहे कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे भंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे कचरी छंद अजय अलह अभय अभय अभू अजू अनास काश गंज भंज लख पख काल दयाल लेख भेख नाम अकाम गाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी मोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे करमं परमं गंजे लेखे भुजंग प्रजा छंद
ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੋਂ ਬਬੂਤੇ ਸਮਸਤਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੋਂ ਬਬੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬਬੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਨਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸਵਯੰ ਭਵ ਸਵੰ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾਂਗ ਸੰਗੀ ਅਭੰਗੰ ਬਿਬੂਤੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸਵਯੰ ਭਵ ਸਵੰ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾਂਗ ਸੰਗੀ ਅਭੰਗੰ ਬਿਬੂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਵੀਂ ਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਰਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤ ਕਉ ਨਾ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਕਿਰਪਾ ਹੂਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਕੋਟ ਪੁਰੰਗ ਪੁਰੰਗ ਸਿੱਖ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੁਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦਨਿਆਵ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਰਾ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨਕ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਦਾਰੇ ਤੀਰਥ

कछ भेद न जानत। महादेव को कह सदा सिम निरंकार का चिंतन भिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तूहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा। एका रूप अनुसरूपा रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेर जो अंडज जेद छेत जकीनी उत भुज खान बौर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवा बैठा कहूँ सिमर पर शंकर काठा। सिगरी सृष्ट दिखाए चंपव आजुगा स्वरूप अंपव। अवर इच्छा मेरी तुम करो सिख भार सिख संग्रो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन खाता। जे अस्तुता सरनी परे तिनके दुष्ट दुख हवा मरे। पुरख जवन पग परी तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए है ताकि काल कट नहीं आया। रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट तना तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताकि ताव तनक मैं हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट सा स्व सका न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि वारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारे दुष्ट दोख ते रहा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी आप हा दै लिहो उबारी। सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छा करता। श्री अस्तु जापय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुना गुंग जो जाहे सुरस ना पावई। सुना मूढ़ चित लाए चितरता आवई। दुख दर्द भव निकट ना तिन नर के रह। हो जो जाकी एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह सहस पनिजै। अर्ध सहस कुंतीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा। तीस कुद्राव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाएंगे जबते तुमरी तबते को वांग करे नहीं आन्यू। राम रहीम पुराण पुराण अनेक है मत एक न मान्यू। सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कहें हम एक न जान्यू। श्री स्पान कृपा

मार जम्ह आवे जाहे। पातशाह कहंदे ने गुरु अमरदास महाराज सेवा दे पण जिन्हां ने गुरु अंगद दे पातशाह महाराज जी दियां चरणां विच सेवा करके गुरु अंगद दे पातशाह महाराज जी दियां सारियां खुशियां लै लईआं सास सारियां। गुरु अंगद दे पातशाह महाराज इन्ने खुश होए सेवा तों ते गुरु अंगद दे पातशाह महाराज जी ने आखिया पुरखा तू साडा सारा कुछ लै लिया आ लै फड़ तैनू एक होर गुरु नानक दी दात दिने। आखन लगे जी की? आखन लगे गुरु नानक दी जोत ही तेरे हिरदे विच टिका दिने। आखो सतना गुरु नानक दी जोत ही हिरदे विच टिका दिती गुरु तगत दी बख्शिश कर ते गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी अज दे हुक्मनामे विच बख्शिश कर रहे ने बिन सतगुर सेवे जी के बंधन विच होमै करम कुमार। पातशाह कहंदे ने हे इंसान हे परमात्मा दे प्यारिया गुरु दे चरणां दे विच सेवा करके सब कुछ प्राप्त हो जाता पर हां जे गुरु दे चरणां विच सेवा नहीं करेगा फिर की होएगा। गुरु दे चरणां विच जेड़े हिरदे सेवा नहीं करते उन्हां दा मन हंकार दे विच आ जाता ते हंकार तेरे ते परमात्मा दे विचकार फिर बंधन बन जाएगा। ओ हंकार हाँ सेवा करेगा बाणी पढ़ेगा शुकराने दे विच रहेगा हंकार दूर हो गया फिर की होएगा। पातशाह कहंदे ने फिर तेरा उस परमात्मा दे चरणा नाल जेड़े बंधन ने ना वो कट्टे जाएंगे। पर हां जे मन दे विच तेरे एह भावना आ गई मैं कीता है पातशाह कहंदे ने इस मैं नू नेड़े ना आण दई ये मैं बंधन बन फिर जेड़ा भी कर्म करेगा एह कही सच्चे पातशाह मैं ना ही प्रभु सब किश ते ईगै निर्गुण ऊगै सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा महाराज मेरे विच ताकत नहीं मैं कुछ कर सकता। आप जी ने रहमत की है आप जी जी की बख्शिश सदका ही सब कुछ खेडा बनती हैं।

0: पहले कठिन जिसको नाच नाच हसी चले सिर उठन जाए सतन नचन कुदन मन का चाओ नानक जन मन पाओ तन मन पाओ पौड़ी
1: नाव तरन निरंकार है न ले अनरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आख गवाई है।

ज्ञानी नतिबा दिवा विरु कृष्णार ऊचे कुकिबा दा गावे दूधा का विचार मूर्ख पंडित हिकम दूजे संजे करी प्यार धरती तुम करे गोवे मंगी मुख द्वार जति सदावे जुगतन जाने छठ बे कृपार सब को पूरा प्रगोवे घट न कोई आखे पल प्रमाण पसी पाई है तना तुल जप महला पहला बदी सब जगनान का सच्चा वेख सोए सबनी छाला मारियां सबनी छाला मारियां।